0: क्या बात है। रोन भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुसी ऑल द वे एक बार स्टूडियो आए, हुण तुहानू आउंदे रहना पैना क्योंकि गल्लां बातां भी करांगे और नाल दी नाल साडा मैसेज असीं चाहुंदे आ कि सलीम
1: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रहीयां हन,
2: पहलां नालों वी घट।
1: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दीयां चुड़ियां होईयां किस्मां 6x330ml सिर्फ $5.99 च।
2: इह तां होर वी घट है,
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तों वी घट।
2: ओए तू किथे जा रही है?
1: अपने बिजनेस लई पैसे बचाउण। तुहाडे बिजनेस लई पैसे बचाउणा साडा बिजनेस है, इस लई असीं कई आइटम दीयां कीमतां घट कर रहे। कोई फीस नहीं, होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
3: Wholesale Club, whole lot of value.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी, ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी, ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी, आओ इस दी शान वधाइए, एदे सोले रल में लगाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा, बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा, अपनी पछाण वाला दीवाना बजा दियो, वेखे पंजाबी ना भुला दियो, वेखे

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घर लगवाना चाहते हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहते हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 4 37 655 1984। पंजाबी लहरां दे किसी भी प्रोग्राम दी फीडबैक देने दे लई कॉल करो 647-504-1557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते।
2: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबाणी रेडियो दिया सर्विसेज दे लई भावें तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या तुहाडे कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिलों वीडियो नू कॉल करो

0: 7998877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: ਪਾਜੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਤੰਦੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਾ।
2: ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼, ਐਂਜੋਏ ਕਰੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼, ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਸਵਾਦਲੇ ਤੰਦੂਰੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬੁਆਇਜ਼।
1: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਪਾਠ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 9054561111 9054519200 ਸਰਵਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ।
3: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवावां देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार,
4: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज, होम इक्विटी, बिजनेस लोन, डेट कंसोलिडेशन, रीफाइनेंस, रेंट टू ओनली, कॉल करो दविंदर पवार नू 6479888731 6479888731।
3: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
4: दविंदर पवार।
3: जेकर एक बार इना तुहाडी फाइल वेख के हां कह दित्ती ता अपने वादे ते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
5: ट्रक एक्सीडेंट च ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
6: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
7: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
8: 6475-5294
6: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
9: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
10: आहो जी मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
9: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
10: एक बार आओगे मैं बार बार आऊंगी।
9: अनबीटेबल प्राइजेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley।
10: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257।
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475-5294-6475-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 4 2 0 2 3 6 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: का विजिटर वीजा भी लेकर आना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: ड्राइव कर रहे हो? शोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
1: ड्राइविंग लाइसेंस?
0: नो.
1: पुलिस ऑफिसर?
0: नो नो.
1: ट्रैफिक लाइट्स?
0: नो.
1: देन
2: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिलदा ए मैसेज. मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले. आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल. 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी. 647-325-9100 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना.
4: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
5: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं.
6: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
7: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
9: हाँ वीर.

Turut Markant, CHLO Digital AM Frequency Line, Toronto, Pennsylvania, New York, Washington, New Jersey, तक सुन रहे हो आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। रेडियो प्रेजेंट कर रहे हैं पीएसएन रिपोर्ट दे ट्रैक 6 जिथे ट्रांजैट तुहानू हवा च उड़दी नजर आऊ वाइट और ग्रीन कलर दी और ग्रे स्काईज ते नाल नाल रलमी धुप दे नाल पीएसएन रिपोर्ट दे ट्रैक बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं जिथे थंडरस्टॉर्म की गल की जा रही है कि एकदम वड्डा चेंज यानी कि लंडन के एरिए च हो तो छतरियां लैके निकले हो लंडन किचन वाटल कैम्ब्रिज उप ईस्ट वाल वैस वाल जाने हो तो तुम थोड़ा जहा टाइम एक्सट्रा लग सकता है थंडरस्टॉर्म की वॉर्म की गल की गई हैगी है। दूसरे पास तुम सारे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करदा चढ़ती कला निरभौ निरवैर कोई खौफ नहीं मन के अंदर कोई डर नहीं है कोई शांत चित निरभौ निरवैर जो थोड़े कर्मा चाह थोड़े को रहना जो नहीं है लख कोशिश कर लियो नहीं रहना है। कई बार असं सोचते हाँ कि सब कुछ चला गया पर तो पता ही नहीं होंगी कि एक नवी शुरुआत की गल होंगी है। 2016 दे विच अराउंड सितंबर महीना सी मैंने याद सी कि मैं यह लगता सी सब कुछ चलिया गया सब कुछ खत्म हो गया। मैं फाइनैंशियल आस्पैक्ट के उत्ते गल करता जिथे अज सारा संसार लंघ रहा एक आदमी जिसका नाम डोनल्ड ट्रंप है उसने जापान कोरिया उस आदमी ने यूरोप ते हुण देखियो अगला स्टैप भारत दा भारत दी इकोनमी दे उत्ते वड्डा असर पाया उस आदमी ने ते इस आदमी दे माड़े कर्मां दे कारण पता नहीं किन्ने क लोग इस समय आवाजार हो गए। इस आदमी दी बदकिस्मती आ जदों भी ये आउंदा दुनिया च वड्डी त्रासदी आउंदी है। पिछली बार जदों ये आदमी आया सी तुसीं सारे भुल गए उस समय करोना वायरस वर्गी नामुराद बीमारी जी हम तक तुसी देखी नहीं सी तुसी देखी तो जो ये जित रहा सी ना जो लोग कह

इस समय 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जी। मोस्टली अज सनी डे शो हो रहा, चलो अज धुप्पैन निकल रही है, ते हाई जाना 21 डिग्री, लो जाना 8 डिग्री सेल्सियस, ते क्लाउडी कंडीशंस भी एक्सपेक्ट कीतियां जा रही हैं 2 बजे दे करीब। हवा जिहड़ी है 33 किलोमीटर पर आवर दे हिसाब दे नाल चल रही है। ते जे आपां देखिए कि अज मौसम तां औसम हैगा, सूरज देवता जी बाय बाय कदों कहणगे, 8:43 ते अज सनसैट हो जाना है। रात का टैंपरेचर भी 10, 9, 8, 6, 5, कल सवेरे 5 बजे 5 डिग्री सैलसियस टैंपरेचर होगा। ते सनराइज कल सवेरे हैगा जी 5:48 ते कल नूं भी सनी डे शो हो रहा। सो मौसम खूबसूरत है, ते बिल्कुल इंजॉय करो अज दे दिन नूं, ते सुनदे रहो 11 बजे तक गुणतास रेडियो।

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन।
2: Rich people don't do different things, but they do things differently.
3: Okay, kar dene tere rich people.
4: Tere vang roz kam te nahi jande. Dollars naal dollars bana dene. Chal ek gal das. Tera $1 million da car paid off hai. Ki tenu kam te jaan di lod hagi hai?
3: Kam te ta jana hi pena hai. Dollar kitho aunge?
4: Bas ehi fark hai. Tu dollars li kam karda hai te rich people dollars invest karke baith ke khande ne. Je tusi vi aida chahunde ho ta hun hi call karo Jasvinder Tillo nu 416-278-8869 te.
3: Main kal hi ja ke aana.
4: Rich people aaj da kam kal te nahi chhadde. Hune call kar 416-278-6869।
5: आप पंजाबी आ गए, मैं हूं पंजाब, मैं हूं पंजाब।
6: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुम भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्हां नो प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे हो साडे अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड दे मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकदा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदेश आबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
2: ਕਾਰਾਂ ਐਸਯੂਵੀ ਟਰੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 416-475-6600 $100 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 416-475-6600 ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ 416-475-6600
3: ਲਓ ਜੀ ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ

0: या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: 32, 55, 80, 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 17, 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 17, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6475302132,
1: 347-302-1322।
2: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is simply Indian. This sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 9057948111. Simply delicious. Matlab, simply Indian.
3: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381। 416-457-3381, 416-725-2551,
0: 9055-64-44।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल एनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका
0: ते सेविंग्स भी। क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Swing in the golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Betty Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee, support community services, and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 Fender Way 85 Montpelier Street 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड, सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जरूर याद रखो। एंड सिंपली इंडियन की क्वालिटी नंबर वन, डीला है ही कमाल दिया। तो सिंपल इंडियन वाले यार जो कुछ कर दिया तो फिर थोनू एन सैटिस्फाई करके ही कर देने। 5505 हेलो।
2: हाँ जी मतलब नवी कराओ तो जितने मर्जी पर आपकी कम्युनिटी च कराओ।
1: नहीं क्यों कहते नहीं, हरेक की आपकी मर्जी है, जितने मर्जी करवा, किसी ने गोरी नाल करवाना गोरी नाल करावे, काली नाल करवाना काली नाल करावे। गुस्सा ना मन्यो बट आपां कौन होने कहण वाले कि आए कराओ ओवें कराओ। 5600 हेलो।
3: हां जी सतिकाल जी।
1: सतिकाल
3: ते देखो ना आपकी मर्जी भी सही है पर मां बाप की जो भैन भरा